0: We are currently at that very area where Abhishek Banerjee, Trinamool Congress MP, was subjected to heckle and people protested in front of him. But once he visited this particular place, this particular house belonged to Sanju Kormokar. TMC alleges that Abhishek Banerjee headed to this place to meet the keen to his TMC man who was died due to political violence. But once we reached in this area and spoke to the woman who protested in front of Abhishek Banerjee, they narrated all deal they had been facing for a long time, that they said there was no development were happening in this particular area. You can see this muddy road headed to this this area. Believe me, this comes under Kolkata Kolkata area, and it comes under Sonapur municipality area. And they also allege this person Sanju Kormokar was associated to several heinous crime, including threatening to women, not letting any development to happen in this locality. Even there are serious allegations being labeled against him to being tortured on women, and which is why the come out and they said they protested in front Abhishek Banerjee, especially women geared out him and protested in front of him. With camera person Suraj Pandey, this is Riktik for NDTV.
1: And opposition leaders from across INDIA bloc have strongly condemned the attack on Abhishek Banerjee, calling it a serious assault on democratic politics. Congress MP Rahul Gandhi termed the incident unacceptable and alleged a deliberate lack of police protection, saying law and order in West Bengal is beyond control. Akhilesh Yadav too condemned the attack, calling it an example of BJP's politics of hate and violence. BJP has rejected all allegations of any kind of involvement. Bengal Minister Agnimitra Paul condemned the attack but said Abhishek Banerjee's own politics and remarks had triggered public anger. She claimed the BJP had no role in the incident and argued the confrontation reflected growing public resentment against TMC rather than any kind of organized political conspiracy.
2: मेरे को बताया बता रहा तो मैं उसको हैदराबाद में ले जा सकता है और कोई भी जगह पे. ए राहुल जी मेरे को फोन पे बताया. ऑल द लीडर्स आर टॉकिंग एंड आई हैव सीन अखिलेश यादव, आई हैव सीन द ट्वीट ऑफ इंक्लूडिंग अमोर, इंक्लूडिंग अदर पॉलिटिकल पार्टीज ऑल्सो, कपिल सिब्बल जी, ऑल वेणुगोपाल जी, ऑल दे हैव सीन देयर ट्वीट्स. सो आई हैव सीन इट, बट I am told, but that time I was not in a mood to see because we are concerned about his health and his health condition is not that good.
3: तो दी क्या उनको कहीं
4: डॉक्टर अगर सोचेगा कि आपको कुछ हुआ नहीं है, आपको सिर्फ एक पैन 40 का जरूरत है, आपको क्या हॉस्पिटल में भर्ती किया जाएगा, आपको बेड दिया जाएगा? हाँ, नाटक करने के लिए, राजनीति करने के लिए. अब डॉक्टर लास्ट बात बोलेगा ना, हम तो नहीं बोल सकते, सीएम साहब तो नहीं बोल सकते, ममता बनर्जी आप भी नहीं बोल सकते. आपका भाईपो को, आपका भांजा को पैन 40 का जरूरत था, उसके लिए भर्ती होना जरूरत नहीं था. राजनीति फिर से बोलेंगे, डिस्ट्रक्टिव राजनीति मत करिए.
5: जो हुआ है अभिषेक के साथ वो नहीं होना चाहिए. कानून किसी को हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, लेकिन पिछले 15 साल से जनता ने जो भुगत रही थी, एक एक व्यक्ति को सताया गया है, किसी को नहीं छोड़, सबका अधिकार को हरण किया गया है. कानून व्यवस्था नहीं, कुछ सुविधा नहीं, बस रूटता रोड बंद कर दिया घर के सामने से 10 साल से, ब्रिगेड लगा दिया गया, किसने अधिकार दिया? तो जनता की जो रोष है वो तो कहीं ना कहीं आना चाहिए. जनता कितना खपा हुआ है, देखिए फलता इलेक्शन में अब टीएमसी को 4th पोजीशन मिला है. इसी को देख के समझ जाना चाहिए, काहे रिस्क ले रहे हैं, हीरो बनने क्यों जाते हो भाई, जो जिंदगी में नहीं किया.
6: जो सत्ता में था टीएमसी का गवर्नमेंट था, ममता बनर्जी को नेतृत्व में, उसी टाइम में जो अभिषेक बंदोपाध्याय, कुंदन बंदोपाध्याय सारे उनको स्टेट लीडर एमपी लो, ऐसा लोगों को सर मुझ मचा किया. जो जो लीडरशिप इतना दिन से आम आदमी को लेके इतने सारा जुलूम किया, तो उनका तो रिएक्शन होना चाहिए, वही हो रहा है।
1: And amid all this, BJP has posted a video of Mamata Banerjee allegedly threatening hospital CEO, calling him arrogant over treatment given to her nephew Abhishek Banerjee. Listen in.
2: You fought for me. You made mistake. You did. You never did. You should be ashamed for it. Everybody will remember. He's arrogant. Don't call me that. Same question on your face. You are running the hospital, getting the doctor. Because the BJP is in power. Tomorrow, if the central government is not done, then we will take it. For the health.
1: Karnataka will usher in a new political chapter on the 3rd of June with D.K. Shivakumar set to be sworn in as the Chief Minister. The formal election of D.K. Shivakumar as the Legislature Party leader paved the way for the oath-taking ceremony, marking the beginning of a new administration in the state. Ahead of the much-anticipated swearing-in ceremony, DK has affirmed that the oath even would be low-key in nature, so as to not to create any disruptions and chaos for the common public in Bengaluru. Even as preparations gather pace for the swearing-in, focus remains on the new cabinet. Key decisions on deputy chief ministers, ministerial berths are expected to reflect the party's regional and caste balancing strategy.
3: Since after the stampede and a lot of it is a working day, already my working president has communicated to everyone. Since our workers also had booked all thousands of buses, we don't want it to be chaos in the Bangalore city. About more than 17,000 vehicles they had booked. So all my police officers were just worried about the big chaos near Vidhan Sudhar Stadium. So we decided to have a low-key function in swearing ceremony in Vidhan Sudha, in Lok Bhavan. So kindly I request all my party cadres to forgive me for this gesture. We also have to help the common men also in this and take the advice of the seniors.
1: Along with you as ministers?
3: That I don't know. Whatever the party high command decided, it will be done. I don't want to comment on
7: that. ಈ ನೋಡಬೇಕು, ಇನ್ನು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಯಾವುದು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಡಿಸಿಎಂ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚೇರ್ಮನ್ಗಳು ಇದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಇವೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ. ಅದು 3rd ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನ ಬಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರಪೋಸಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಹೆಲ್ತ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆತ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಅವ್ರ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ, ಅದು ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು 15 ಒಂದ್ ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಂತ ಸಚಿವ ಸದಸ್ಯರೇನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದ್ ವಿಚಾರ ಇದೆ.
8: पता नहीं है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो अंतिम तो हाईकमांड का निर्णय है. अभी तो सिर्फ अभी चर्चा तो सीएम का चल रहा है, इसके बाद अभी टाइम बहुत है. अगर चाहिए तो बना सकते हैं. अभी मंत्रिमंडल तो पहला बनना है, बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादा दिन हम वैकेंट नहीं रखते सरकार को. फिर काम शुरू करना है, उसके बाद कोर कमेटी हो जाएंगे, अध्यक्ष होएंगे और चर्चा करेंगे बाद में. अंतिम निर्णय तो हमारा हाई कमांड ले लेंगे, वेट करेंगे तब तक. बेस पॉलिटिक्स चलता है ज्यादा. कास्ट को तो समानता में रखना चाहिए, बैलेंस करना है पहला. दूसरा जो अनुभव है, जो अच्छे इनका डिपार्टमेंट हैंडल कर सकता है, अच्छे उनका पिछले कार्यकाल अच्छा हो वो रहेंगे, और कोई अच्छा रहेंगे तो उसको हाई कमांड चूज करेंगे मंत्रिमंडल में.
1: With Karnataka's change of guard now complete, the spotlight is once again on the main person who is poised to take over as the chief minister. D.K. Sivakumar is known as much for his political maneuvering as for his unmistakable personal style. Designer scarves, luxury watches and a public image that makes no attempt to hide his wealth. And as he gets ready to occupy the state's top post, his carefully crafted brand is back in focus.

0: Higher end, check the audio. Higher end, check the audio.
1: Let's do it. Let's do it. Let's start.
2: Big news that we're breaking first here on NDTV.
3: We know for sure that they have, you know, confirmed their support to him.
2: We've got a picture of the letter.
4: The breaking story, we're jumping straight into it.
5: They do not want to be part of an experiment.
4: Show around and then come to me. At the Nehru Stadium in Chennai.
6: Unconditional support.
3: Crime killer of TVK is here with us.
4: We've got Mr. Dinakaran with us here.
2: Veera, why aren't you also dancing?
3: Vijay is coming out, TVK chief.
2: Big breaking story here on NDTV. Nobody else has these details.
7: Welcome back. A fresh political controversy has erupted in Bihar after RJD leader and former chief minister of Rabri Devi was issued a notice to vacate her government-allotted residence at 10 Circular Road in Patna. Rabri Devi challenged Chief Minister Samrat Chaudhary to remove her from her government bungalow by force, saying she would not vacate the premises voluntarily. Now, according to the notice, an alternative accommodation has already been offered to Rabri Devi at house number 39 on Harding Road. However, the move has triggered a political slugfest, with Bihar Deputy CM calling out Rabri Devi to follow the rules set by the government. JDU leaders also went on to slam her, asking to lead by an example and not cling to a government bungalow. With this, the RJD rallied behind Rabri Devi, alleging that the action was politically motivated and aimed at targeting its senior leaders.
8: से लोग हैं, माननीय सांसद है, विधायक हैं, इन दोनों कैटेगरी से अलग के भी लोग हैं जिनके पास अनाधिकृत मकान है, जो लोकसभा में चले गए हैं जीत करके और बिहार विधान परिषद के सभापति रह चुके हैं, उनके जिम्मे अलग मकान है। मकान का जो आवंटन है वो नियम के अनुसार नहीं चल रहा है। मंत्रियों के मकान आवंटित करनांकित नहीं है, उस आधार पर नहीं होता है। तो मंत्री को तो आप कहीं भी दे सकते हैं, तो बदनाम करने के लिए शेड्यूल कास्ट के मिनिस्टर को यहाँ रखा है। तो ये जानबूझ करके प्रताड़ित करने के लिए, अपमानित करने के लिए सरकार ने एक रास्ता चुना है।
9: इसमें जो नियम कानून कहता है वही होता है और सब लोगों को नियम का पालन करना।
10: जो कानून कहता है उस सवाल पर कोई हठधर्मिता नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि विपक्ष के नेता हैं। आपका जो आचरण होगा वह आपके विधायकों के लिए अनुसरण करने लायक होगा। और जब इसकी प्रक्रिया है, वैकल्पिक मकान उपलब्ध करा दिया गया है, तब हम समझते हैं हठधर्मिता नहीं करनी चाहिए। अरे वो तो प्रक्रिया है ना, वो तो बायलॉज बना हुआ है इसके लिए। तीन नोटिस पहले गया, ऐसा ही थोड़ी है कि जब मर्जी करेगा आप किसी का मकान में एंट्री करा दीजिए, कब खाली करा दीजिएगा। इसलिए कि सवाल इस बात का है कि सरकारी संपत्ति पर निगाह नहीं रखनी चाहिए।
11: देखिए सरकार ने

0: बताने के बाद तुरंत उनको मार डाला भी जाता था, उनके ऊपर बहुत हल्ले भी होते थे। तो इसलिए मुझे लगता है हिंदू समाज, सनातन हिंदू धर्म में हम लोग सूद समेत सब कुछ वापस देते हैं, तो वही इंटरेस्ट के साथ वापस देने का काम अभी पश्चिम बंगाल के सरकार लोगों ने शुरू कर दिया है।
1: स्ट्रांगली डिप्लोर दिस द न्यूली फॉर्म्ड गवर्नमेंट लेड बाय सुरेंद्र कुमार शुड इंट्रोस्पेक्ट दिस राइट नाउ। इफ दिस थिंग्स गोज ऑन then there will be a retaliation from the other party also, then that will be not good for the state. When you talk about the development, Vikasit Bharat, and then in Vikasit Bharat, the people of the country are also required to be Vikasit, but that is not, they should be protected to get that done. But here the member of parliament is none other than, he is a member of parliament, he may be a nephew of the ex-chief minister of the West Bengal. How can somebody can assault him that way? This is really a serious issue. I strongly deplore this.
2: कि मैं क्या बताऊं, मैं कलकत्ते में थोड़ी हूं, हाँ मैं क्या बता सकता हूं। इस किस्म की चीज अच्छी नहीं है हमारे राजनीति के लिए। जो भी हो रहा है, हमारी परंपरा यह है कि हम बैलेट बॉक्स में जाके हमारी राय बताएं, पत्थर से या लोगों को पीट के मार के नहीं करना चाहिए।
3: Shashi Tharoor there speaking on the matter as well. We will keep tracking that story. For now, slipping into a very short break.

0: असेसमेंट की जो प्रक्रिया थी वो डिजिटली होती थी। विद्यार्थी अपने प्रश्न लिखने के बाद, परीक्षा वैल्यूएशन के बाद जो उनकी रिजल्ट आता है, रिजल्ट में अगर सहमत नहीं होती है, वो अपना अधिकार है, वो जाके दोबारा पूछे कि भाई मेरे इसमें क्यों कम नंबर आया। उसकी प्रक्रिया वो डिजिटली होता था, इस बार भी डिजिटली हो रहा है। उसकी पहले इस बार एक नया चीज़ किया वो CBSE ने, इसकी जो इवैल्यूएशन होता है परीक्षा पत्र की, प्रश्न पत्र की, वो पहले मैन्युअली होता था, उसी जोन के अंदर होता था। थोड़ा इसमें भी 50 प्रकार की कंप्लेन आती थी, हमको कम नंबर आया, हमको थोड़ा पार्शियल हुआ उस विषय में, थोड़ा ऐसे हो गया। इसको OSM ऑन स्क्रीन मार्किंग एक नया प्रैक्टिस है, एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ड्रिवेन प्रैक्टिस है। ये अनेक इंस्टीट्यूट उसको अपनाए हैं, विश्व की एक्सेप्टेड प्रैक्टिस है। CBSE ने अपने रिफॉर्म के नाते उसको अपनाया है। अभी मैं आपको कहूँ, 17 लाख विद्यार्थी परीक्षा दिए, उनमें से 13 लाख विद्यार्थी लौट के आए नहीं कि मैं मेरे नंबर पे डिससैटिस्फेक्शन में रहा है, वो आए नहीं, आए 4 लाख। हर एक साल आते हैं 2-2.5 लाख हर एक साल विद्यार्थी, पहले भी आते थे कि मेरे नंबर पे कुछ विषय है, उसको थोड़ा दोबारा देख लिया जाए, और CBSE उसको देखता था। इस बार उसकी संख्या बढ़ के हो गई 4 लाख। इसकी एक प्रमुख उसमें क्यों ये ओहोपोह की स्थिति हुई, उन्होंने जब विद्यार्थियों ने एप्लीकेशन किया, ऑनलाइन एप्लीकेशन का पहले भी होती थी, इस बार भी एप्लीकेशन किया, वो पोर्टल जितना तंदुरुस्त होनी चाहिए था, जितना मजबूत होनी था, वो नहीं था। CBSE ने उस पोर्टल को सफलता से चला नहीं पाया, इसके कारण उसमें एक ग्लिच हुई, उसमें क्रास हो गया, 2-3 दिन की थोड़ा गड़बड़ी हुई, जिसके कारण बच्चों में थोड़ा नाराजगी भी बढ़ी। यह विसंगति को ठीक कर लिया गया है। अभी मेरे पास जो लेटेस्ट जानकारी है, 4 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी एप्लीकेशन किए कि हमको रीअसेसमेंट करना है, री इवेल्यूएट करना है। उसमें से उन्होंने 11 लाख क्वेश्चन सेट्स मांगा, ये सब लगभग विद्यार्थियों के पास पहुंच गया है। अभी उस पोर्टल को हम लोग उसको ठीक कर रहे हैं।
1: Meanwhile, let's turn our attention now to breaking news coming in currently. A major demolition drive has been carried out in Gujarat's Viramgam as authorities move to clear land for the expansion of a state highway, we're told. The administration says the operation was part of the four-laning project connecting Viramgam, Surendranagar and Vadhvan and involved the removal of encroachments. But among the structures demolished were 3 dargahs, making this exercise particularly sensitive and also prompting a massive security deployment. We're told 3 dargahs and 1 kabristan were demolished by officials in Gujarat's Viramgam. Saurabh Bhaktania has sent us a bunch of reports. Listen in.
2: वडवान सुरेंद्रनगर विरमगाम स्टेट हाईवे 17, उसके वाइटनिंग का काम शुरू है। विरमगाम सिटी के एंट्री पॉइंट पे यहाँ पे बॉटल नेक था, यहाँ पे 3 दरगाह थी और कुछ कब्रस्तान का उपयोग हो रहा था। उस ज़मीन को लैंड एक्वायर करके वो जो लैंड ओनर्स थे उनको कंपेंसेशन दे के और जो कब्रस्तान की ज़मीन थी उसका लैंड यूज़ पैटर्न चेंज करके आज हमने ये ज़मीन का कब्जा ले के ये काम शुरू करवाया है।
3: विरमगाम के स्टेट हाईवे 17 को वाइडनिंग का काम चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग अभी 1 DYSP, टोटल 15 पुलिस इंस्पेक्टर और 550 से ज़्यादा पुलिस फोर्स तैनात की गई है। उपरांत हमारे पुलिस व्हीकल, पुलिस के एंटी रायड गियर्स और ड्रोन, सभी तरह का टेक्निकल और ह्यूमन पेट्रोलिंग किया जा रहा है और अभी सुबह से लेकर पुलिस लगी हुई है और आगे भी पुलिस का बंदोबस्त तैनात है।
4: हमने देखा कि पूरे इलाके को एक तरीके से कॉर्डन ऑफ किया है, किस तरीके के हालात है और कैसे ये बंदोबस्त पुलिस ने लगाया है?
3: ये बंदोबस्त को लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और कम्युनल एंगल से ध्यान में रखते हुए हमने पहले तो सभी कम्युनल लीडर्स की मीटिंग की थी और सभी को एक साथ एक मंच पर लाने का प्रयास किया था। सभी को एक साथ लाते हुए हमने इस इलाके को कॉर्डन ऑफ करने की ट्राई की ताकि इस इलाके में कोई भी लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन ना हो।
4: मेगा डेमोल्यूशन ड्राइव इज राइट नाउ अंडर वे इन विरमगाम एरिया ऑफ अहमदाबाद रूरल। बिहाइंड मी इन द विजुअल्स यू कैन क्लियरली सी दैट हाउ ऑफिशियल्स आर राइट नाउ कैरिंग ऑन दिस डेमोल्यूशन ड्राइव। लेट मी टेल यू, दिस डेमोल्यूशन ड्राइव स्टार्टेड अर्ली एट 6:30 इन द मॉर्निंग। देर वर 3 दरगाहस एंड ऑल्सो पोर्शन ऑफ कब्रिस्तान ओवर हियर ऑन दिस पर्टिकुलर रोड विच इज़ कम्प्लीटली डेमोलिश बाय द ऑफिशियल्स। नाउ दिस इज स्टेट हाईवे नंबर 17 एंड स्टेट हाईवे नंबर 17 ओवर हियर देर वॉज दिस बॉटल नेक। दिस इज अ 300 meters ऑफ पर्टिकुलर लैंड, दिस वॉज कम्प्लीटली बॉटल नेक। दिस जॉइंट्स द वाडवान सुरेंद्रनगर विरमगाम हाईवे एंड ड्यू टू दिस पर्टिकुलर बॉटल नेक देर वॉज ह्यूज traffic jam which was happening in this particular area, and now finally officials are over here. They are demolishing the entire particular area. This you can also see over here that how officials are measuring that how much portion of the land has to be acquired for the state highway construction and how much more part has to be demolished. So all the officials are present over here. There are over 550 police officials present over here. The entire area which leads to this particular demolition drive is completely cordoned off. It's completely barricaded by the officials. The religious leaders were taken into consideration and proper appeal was made. And right now, behind me in the visuals, you can clearly see at this particular place, there were three dargahs. That side of the road was Kabristan, which has now completely been demolished by the police officials. And the road has been clear for the state highway.
1: All right, let's move on to other stories we're tracking this morning. From tariffs to $500 billion investment promises and trade agreements. You see, the India-US ties are ever-evolving. Both our nations are taking calculated steps after months of strained ties. The visit of a US delegation to India marks a major development in our relationship, and here are the details you cannot ignore.
5: America and India truly are working as natural partners. We complement each other.
6: From tariff policies to uncertainty surrounding the visas, India-United States ties have suffered massive blows during President Trump's second tenure. However, things took a positive turn ever since United States Secretary of State Marco Rubio's visit.
7: That's not what he said. The president loves India. He said it last night. Were you guys there when he called in for the event last night, the 250? The president's a big fan of India, a big fan of Prime Minister Modi. I wouldn't be here if the president didn't want me to be here.
6: The visit has reset India's ties with America on a global front and brought India-United States ties back in the focus.
8: Secretary of State Rubio has signaled the importance of India, continued importance of India as a democracy, as a strategic partner in the Indo-Pacific and beyond.
6: India and United States issued a joint statement on February 2026 agreeing on a framework for an interim agreement regarding the reciprocal and mutually beneficial trade. Following this, the Indian side visited Washington from 20 to 23rd of April 2026 for in-person round of meetings with their United States counterparts. Now the United States delegation is arriving in India on June 1st to carry forward the talks. India and United States has agreed on some key frameworks under the deal. This includes a framework agreement on critical minerals and rare earth cooperation, which is a strategically crucial sector currently dominated by China. India's commitment to purchase $500 billion worth of American goods over the next 5 years, with agriculture, energy and technology emerging as the key focus sectors. Expanding cooperation in artificial intelligence, the reduction of tariff on Indian imports, and elimination or significant reduction on tariffs and non-tariff barriers on imports of industrial goods, other products from the United States. However, this framework was left in a limbo after the United States Supreme Court ruled that the sweeping global tariffs introduced by President Donald Trump were illegal. Now the United States trade delegation is set to arrive in India for a historic visit from June 1st to 4th to finalize the terms of the interim trade agreement and push for a broader bilateral trade agreement.
9: This has been, we've had many meaningful discussions. We have a framework agreement done with the Indians. I have a team going there next week. I expect to meet with my counterpart soon as well. I would really like to be in a position to finalize our agreement with them as well on the basis of the joint framework we agreed to. It would be historic for the US and India.
6: India is gearing up for the high-stakes visit, with the trade deal expected to be signed within the next few weeks or months.
10: Our current interim trade agreement is on the table for us to finalize, and that will unlock prosperity for both of our countries. Just last week, India had sent a team to Washington, D.C. to finalize the last 1% of that trade deal. Next week, we will welcome a U.S. delegation here to continue those talks. We fully expect that the trade deal will be signed over the next few weeks and months.
6: So whether India will get a good trade deal with the United States is yet to be seen. Bureau Report, NDTV World.
1: All right, switching tracks. 6 years after its launch, PM Swanidhi has become a major financial inclusion success story, we're told. Launched during the pandemic, the scheme has provided over 1.12 crore collateral-free loans worth 17,800 crore rupees, benefiting more than 75 lakh street vendors. Now extended till the year 2030, it continues to support urban micro-entrepreneurs across our country. Here are the details you cannot miss.
6: Years after its launch during the COVID pandemic, PM Swanidhi has emerged as one of India's largest financial inclusion initiatives for street vendors. The scheme was designed to support vulnerable urban micro-entrepreneurs who were among the worst affected by the lockdown. Now extended till 2030, the scheme continues to transform livelihoods. The numbers tell a remarkable story. More than 75 lakh street vendors have benefited under the scheme with over 1.12 crore collateral free loans worth rupees 17,800 crore disbursed, with nearly 46% of beneficiaries just women. For Chandigarh's Pooja Rani, PM Swanidhi became a lifeline after personal tragedy. Widowed in 2009 and struggling to support her children, she started with a small purse-selling business. Today, her business is thriving.
11: मेरे घर वाले की डेथ हो गई थी, कमाने वाला कोई नहीं था, बच्चों की जिम्मेवारी मेरे ऊपर थी। मेरे को आसपास लोगों ने बताया पीएम स्वनिधि योजना चल रही है, तो उन्होंने मेरे को मेरा आधार कार्ड लिया और मोबाइल नंबर लिया, तो उन्होंने बोला एक दो दिन में आपका लोन आ जाएगा। दूसरा काम शुरू करने के लिए मैंने 20,000 का लोन लिया, फिर मैंने 50,000 का लोन लिया, मैंने सामान डाला, सामान डाल के मेरे को बहुत बेनिफिट मिला उसमें।
6: The scheme also helped vendors dream bigger. Ranchi's Gopal Prasad Barman started with a tea cart, later expanded into snacks and eventually opened a clothing shop.
12: तीसरा लोन मिल जाने के बाद जो अटल स्मृति वेंडर मार्केट में मुझे जो दुकान मिली है, मैं उसे शुरू कर चुका हूं। मैं चाहता हूं कि उसको और अच्छे तरीके से डेवलप करते हुए अपने व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने का कोशिश करेंगे।
6: PM Swanidhi goes beyond loans. Through the Swanidhi Se Samriddhi initiative, beneficiaries and their families are linked to multiple welfare schemes. Vendors also receive training in financial literacy, digital literacy and food safety practices. Varanasi vegetable vendor Sheila Devi escaped dependence on high interest money lenders through the PM Swanidhi loans.
13: हमें स्वनिधि मिला और हमारा कारोबार आगे बढ़ा, वैसे सारे वेंडरों को लोन मिले स्वनिधि का और सभी लोग आगे बढ़े, सबको सम्मान मिले।
6: फरीदाबाद राकेश कुमार ग्रू हिज बिजनेस विद स्कीम सपोर्ट एंड FSSAI ट्रेनिंग।
14: पहले बहुत ज्यादा दुकानदारी इतनी नहीं थी, तो उधार वगैरह चढ़ गया था, जिससे हम बहुत परेशान हो गए थे। मुझे किसी दोस्त ने बताया था कि ऐसे ऐसे फार्म भर रहे हैं, 10,000 रुपये लोन मिल रहा है रेडी पटरी वालों को। तो जब मुझे पीएम स्वनिधि के बारे में पता चला, तो मैंने 10,000 का लोन लिया। मैंने थोड़ा काम बढ़ाने की सोची, तो 20,000 रुपये का लोन लेके के बाद मैंने घर से छोले चावल वगैरह रोटी सब्जी वगैरह बना के लाने लगा। उसके बाद मैं 50,000 रुपये का लोन लिया, जिससे मैंने थोड़ा काम भी बढ़ाया और घर की कंडीशन भी थोड़ी बहुत सही की।
6: While Ghaziabad's Babita Sharma moved from a small puja stall outside a temple to a rented shop after successfully availing all three loan tranches.
15: It पीएम सुनिधि योजना ने मुझे एक रोजगारी नहीं, एक इज्जत से सर उठाकर जीने का एक रास्ता दिखाया। मैं आज इज्जत से चल सकती हूँ और लोग सम्मान से भी मेरे से बात करते हैं।
6: 6 years on, the scheme stands as a model of financial inclusion, entrepreneurship and employment, helping millions move from survival to self-reliance and from uncertainty to opportunity. Bureau Report, NDTV.
1: All right. Meanwhile, diplomatic ties between India and the United States, they continue to evolve. A high-profile private visit is what's drawn attention. Tiffany Trump, U.S. President Donald Trump's daughter, is touring some of India's most iconic heritage landmarks alongside her husband. This next report takes a closer look at their journey and itinerary across our country.
16: From Agra's Taj Mahal to the forts of Jaisalmer, India's heritage sites are welcoming a rather unexpected guest. Tiffany Trump, the fourth child of US President Donald Trump, is currently on a private visit to India with her husband, Michael Boulos. The couple was earlier seen at New Delhi's Akshardham Temple and Agra's Taj Mahal before setting out for Jaisalmer. Tiffany and Michael are accompanied by US Ambassador to India, Sergio Gaur, during this visit. The high-profile couple visited the Sonar Fort in Jaisalmer today, where former officials even appreciated the couple's down-to-earth nature.
17: पूरा पैलेस देखा, इसके बाद जब उन्हें पता चला कि ये पॉपुलेटेड फोर्ट है, यहाँ पे अभी भी कई फैमिलीज रहती है, तो उन्हें बहुत सुखद आश्चर्य हुआ इस बात का। और जब उनसे ये कहा कि आपने इस गर्मी में यहाँ आना स्वीकार किया, तो वो अभिभूत हो गए और उन्होंने कहा कि बिल्कुल ऐसा हमें लग ही नहीं रहा कि हम इतनी भयंकर गर्मी में जैसलमेर आए हैं।
16: Tiffany and Michael have been in India since May 29th. And are visiting some of the country's iconic heritage sites. This adds to the series of high-profile visits from the US to India in the past month, as this comes after the Secretary of State Marco Rubio's visit and right before the US delegation is about to arrive in India to discuss the interim trade agreement. Bureau Report, NDTV World.
1: And as we wrap, you must know thousands of Arsenal fans flooded the streets of London, lighting red flares, waving flags as they celebrated a historic season for both the men's and women's teams. The men's side ended a 22-year wait to win the Premier League title, while the women's team joined the celebrations after lifting the FIFA Women's Champions Cup earlier this year. Players from both squads paraded through the capital on open-top buses, as you can see, greeted by jubilant crowds in a city-wide celebration. We leave you with these visuals.

0: Prime Minister's leadership at the centre, and whether he would, in this situation, bid goodbye to the party, that's something we'll have to wait and watch. But certainly, clear indications that he is all set to launch a movement, whether it will take the shape of a political party sooner or later, that's something we'll have to wait and watch. Tamil Nadu could witness by-elections coming up because Vijay has resigned from the Trichy East. A few other AIADMK rebel MLAs have resigned from their positions, have joined the TVK. So this could be one opportunity, or the 2029 Lok Sabha elections, or the next assembly elections. But this is being seen in a sense as a trial balloon to see what kind of a response he gets from the public when it's a movement, it's not part of the BJP.
1: Right.
0: But all would depend perhaps on the kind of response this initiative of him would garner.
1: Of course. As always, Sam, thank you so much for breaking down the latest developments for us and contextualizing these details. All right, let's turn our attention now to what Chief Minister Vijay is up to. He's set to visit Tiruchirappalli for the first major outreach event since assuming office. This public meeting will actually mark the first public meeting after the recent poll victory, and he's actually expected to thank his voters and supporters during this rally in Trichy. Authorities have issued tight guidelines for this event. Attendance has been capped at 5,000 people. We're told entries only permitted with QR codes. Pregnant women have been advised to avoid this gathering, while school students have also been discouraged from attending. So this event is capped at 5,000 people with strict measures. On that note, let's turn our attention to West Bengal now. The attacks on TMC MPs Abhishek Banerjee and Kalyan Banerjee have triggered a fierce political confrontation between the Trinamool Congress and the BJP. TMC has alleged that both incidents were part of a coordinated, politically motivated campaign. But the BJP, however, has strongly denied any involvement, arguing that the confrontations reflect growing public anger against the ruling party in West Bengal rather than any organized conspiracy. In fact, the Trinamool Congress has announced statewide protests today. Mamata Banerjee is expected to lead the protest on behalf of the government, on behalf of the Trinamool government, in Kolkata specifically. Police have stepped up the investigation, meanwhile, into the attacks on TMC MPs. In terms of tangible action, I can inform you that a Suo Moto case has been registered. Five people have been arrested regarding this incident.
2: ওনার ড্রামা আমরা রাস্তা থেকে পার্লামেন্ট অবধি সব জায়গায় দেখেছি। এমন একটি লোক, এত বছরের পলিটিশিয়ান, এমএলএ, এমপি, এতবারের এত সিনিয়র অ্যাডভোকেট, তার ব্যবহার তার পার্টির মধ্যেই কমপ্লেনের যোগ্য। আপনারা জানেন পাবলিকের মার দুনিয়ার বার, যেন পাবলিকের যে রাগ আছে, রোষ আছে, ওটা ঠান্ডা হতে দিন। এত তাড়াহুড়ো করার কিছু নেই, অনেক বছর দাপিয়ে বেরিয়েছেন, শান্ত থাকুন না।
3: কোই ল অর্ডার নেই বাঙাল মে, কোই কানুন ব্যবস্থা নেই, জঙ্গল রাজ হ্যায়। ये बदलाव नहीं, बदले की राजनीति बंगाल में चल रही है। अभिषेक बैनर्जी को जिन्होंने मारा, अलग अलग न्यूज मीडिया में दिखा रहे हैं कि उनको आम जनता मार रही है। वो बीजेपी की नेत्री है, सोशल मीडिया पे हमने सबों के फोटो डाल दिए हैं। वो बीजेपी की नेत्री अमित शाह के साथ खड़ी है, अग्निमित्रा पॉल के साथ खड़ी है, और वह शुरू में अंडा लेके खड़ी है कुछ 9-10 महिलाएं जो कह रही हैं कि अभिषेक बैनर्जी आएंगे तो हम इससे स्वागत करेंगे। इससे ज्यादा और क्या प्रमाण चाहिए?
4: ये जनता का गुस्सा है। अब अभिषेक बैनर्जी कल बोल रहे थे कि भाजपा ने करवाया ये, और आज जब अरेस्ट हुआ तो देखा जा रहा है कि लवली मैत्रो वहां का टीएमसी विधायक के, एक्स विधायक के करीबी सब कैडर लोग है। तो ये टीएमसी में गोष्ठी दन तो आज का बात नहीं है, वो बहुत दिन से चल रहा है। क्योंकि ये जो पार्टी है वो तोलाबाजी, सिंडिकेट और कटमनी के ऊपर चलता है। देश सेवा उनका प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है, इसीलिए आज पश्चिम बंगाल 50 साल मिनिमम पीछे चला गया।
5: वो बंगाल की सब आम जनता देख रहे हैं बंगाल में क्या चल रहा है। हमको मत बुलाइए, मेरे दल का जो मुखपत्र है वो लोग बोलेंगे।
6: कल्याण बनर्जी, अभिषेक बनर्जी,
5: वही तो बोल रही हूँ, दुनिया देख रहा है, खाली बंगाल नहीं, देश देख रहा है, दुनिया देख रहा है क्या हो रहा है।
7: What we saw was a very fine drama unfurled by Kalyan Banerjee. Probably he wants to take away all the limelight from Abhishek Banerjee, following Abhishek Banerjee's egg fiasco.
8: What I have to say is that

0: system and also trying to build a stronger system as far as the secure connection is concerned. But it seems like the manner in which the issues are coming to light, the system has completely collapsed, keeping the future of millions of students at stake. So it is high time for the CBSE to take the responsibility and also, in fact, to hold those individuals accountable who are responsible for this complete chaos in the system.
1: Tejshree, thanks so much. We'll, of course, track all the latest reactions with you. CBSE maintains that its processes are designed to ensure fairness and that mechanisms exist for students seeking verification. But the opposition, meanwhile, is arguing that the costs involved become difficult to justify if mistakes are being acknowledged by the system itself. The CBSE portal controversy continues to snowball, with the board now admitting to vulnerabilities as far as the OnMark platform is concerned. The CBSE has assured that cybersecurity professionals have now been deployed, identified weaknesses, and those weaknesses have now been contained, and system fortification is underway. This development comes after a cybersecurity researcher alleged that an improperly configured cloud storage bucket allowed public access to exam-related booklets, calling the setup highly insecure. The CBSE has also announced measures to strengthen payment systems, to strengthen the re-evaluation process as well, which starts today with four public sector banks that are set to assist in handling transactions and automatic refunds too. Meanwhile, earlier we spoke to Mr. Dharmendra Pradhan. The Union Education Minister has addressed concerns surrounding the CBSE Class 12 result on-screen marking controversy and the anxiety among students over re-evaluation and access to answer sheets. Speaking exclusively to NDTV, Mr. Pradhan said the government's priority was to provide relief to students that are facing stress due to this entire issue. And he categorically said he holds himself accountable. Listen in.
2: चाहे 12वीं के नतीजे हों या फिर नीट लीक का मामला, ये तमाम सवाल हैं जो इस वक्त छात्रों के जहन में है कि अब आगे क्या, उनकी एंग्जाइटी, उनके तनाव को कम करने के लिए वो रास्ते तलाश रहे हैं, सवालों के जवाब तलाश रहे हैं। और इन्हीं सवालों के सीधे जवाब लेने के लिए हम पहुंचे हैं देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के पास। आइए सीधे उनसे बात करते हैं। धर्मेंद्र जी, शुक्रिया आपने वक्त निकाला है, लेकिन ये कठिन घड़ी है छात्रों के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए। मैं खुद एक पेरेंट हूँ और मैं समझ सकती हूँ कि किन तनाव से एक छात्र का पेरेंट और एक छात्र खुद गुजर रहा हो। OSM को लेकर तमाम बातें कही हैं और मैं शुरुआत उसी से करूँगी कि इस वक्त OSM एक ऐसा मामला है, जब एक ऐसे पड़ाव में छात्र है जब अपने करियर की उड़ान वो भरने वाला है, यूनिवर्सिटी का दाखिला है, कॉलेज का दाखिला है, अब वो क्या फेरे में पड़ा है? वैल्यूएशन जो हो रही है, इवैल्यूएशन जो हो रही है, रीवैल्यूएशन जो हो रही है, ऐसे में ऐसे अभिभावकों को, छात्रों को अभी आप क्या कहेंगे?
3: देखिए, मेरे दायित्व, मेरे समवेदना, मेरे सिंपाती विद्यार्थियों की एंग्जायटी के साथ है। मैं उस विषय में देश की शिक्षा विभाग के दायित्व में रहने के नाते मैं खुद को जवाबदेही मानता हूँ। हमारे दायित्व है इसकी, उस तनाव में कैसे बच्चों को निवृत्त करना, कैसे उनको रिलीफ देना। आपने OSM के बारे में पूछा और उसमें OSM एक बाधक इस प्रकार के आपने एक चित्रण किया। देखिए, हर एक साल परीक्षा होती है, परीक्षा के बाद रीअसेसमेंट की मांग होती है, उसकी व्यवस्था भी है, हर एक साल रीवैल्यूएशन भी होती है। ये कोई नई व्यवस्था नहीं है। जो रीवैल्यूएशन, रीअसेसमेंट की जो प्रक्रिया थी वो डिजिटली होती थी। विद्यार्थी अपने प्रश्न लिखने के बाद, परीक्षा वैल्यूएशन के बाद जब उनकी रिजल्ट आता है, रिजल्ट में अगर सहमत नहीं होती है, वो अपना अधिकार है, वो जाके दोबारा पूछे कि भाई मेरे इसमें क्यों कम नंबर आया। उसकी एक प्रक्रिया, वो डिजिटली होता था, इस बार भी डिजिटली हो रहा है। उसकी पहले इस बार एक नया चीज़ किया CBSE ने, इसकी जो इवैल्यूएशन होता है परीक्षा पत्र की, प्रश्न पत्र की, वो पहले मैनुअली होता था, उसी जोन के अंदर होता था। थोड़ा इसमें भी 50 प्रकार की कंप्लेन आती थी, हमको कम नंबर आया, हमको थोड़ा पार्शियल हुआ, उस विषय में थोड़ा ऐसे हो गया। इसको OSM ऑन स्क्रीन मार्किंग एक नया प्रैक्टिस है, एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ड्रिवेन प्रैक्टिस है। ये अनेक इंस्टीट्यूट उसको अपनाए हैं, विश्व की ये एक्सेप्टेड प्रैक्टिस है। CBSE ने अपने रिफॉर्म के नाते उसको अपनाया है। अभी मैं आपको कहूँ, 17 लाख विद्यार्थी परीक्षा दिए, उनमें से 13 लाख विद्यार्थी लौट के आए नहीं कि मैं, मेरे नंबर पर डिससैटिस्फेक्शन मेरा है, वो आए नहीं। आए 4 लाख, हर एक साल आते हैं 2-2.5 लाख हर एक साल विद्यार्थी, पहले भी आते थे कि मेरे नंबर पे कुछ विषय है, उसको थोड़ा दोबारा देख लिया जाए। और CBSE

0: Scheduled meeting. It was called by Leader of the Opposition Shobhandeep Chattopadhyay, and to underscore its importance, it was held at Mamata Banerjee's residence in Kalighat, the one spa corridor here in West Bengal. But out of the 80 elected MLAs, just about 20 handful MLAs arrived. Amongst them were heavyweights Firad Hakim, Noyana Bandyopadhyay, Kunal Ghosh, Madon Mitro, the old time veteran leaders who have been seen with Mamata Banerjee. But several of the MLAs have skipped, almost 60 MLAs skipped that meeting, and that is a cause of worry. Now, of course, Kunal Ghosh has tried to put up a defense and diffuse the matter by saying that it has been postponed because of the kind of protests that have been taking against the attack against their National General Secretary Abhishek Banerjee that took place on Saturday.
1: Well, but the reality is, on to that thought, we have Rahul Sinha of the BJP joining us in order to get a reaction as to what is the BJP saying on this front. Well, आपका रिएक्शन सर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अटैक्स हुए हैं एज फार एज टीएमसी एमपीज आर कंसर्न. कल हमने सुना कल्याण बैनर्जी कह रहे थे देयर इज अ बिड टू किल मी. अभिषेक बैनर्जी को हॉस्पिटल ले जाया गया, बट अब देख रहे हैं जो मीटिंग होनी थी, ये स्केड्यूल्ड मीटिंग थी, लेकिन ये हो नहीं पाई बिकॉज सिर्फ 20 एमएलएस पहुंचे 80 में से. आपका रिएक्शन?
2: देखिए, अभी तो अभिषेक बैनर्जी के ऊपर जो हमला किए थे, पूरा तृणमूल का साजिश, वो अभी जनता का सामने चले है. जितना लोग ये काम किया, फोटो देख के पुलिस उनको पकड़ा, और सारे तृणमूल का कार्यकर्ता, इसलिए ऐसा किया गया जो एक तो वो दिखा सके, थोड़ा सिंपैथी ले सके, और दूसरा अपना सिक्योरिटी बढ़ाने का चक्कर में ये साजिश उन्होंने किया था. अभी ये चीज पकड़ा गया, स्पष्ट हो गया इस ये लोग कितना घृण्य है. मैं हॉस्पिटल का जो डॉक्टर है उन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ. ये लोग हॉस्पिटल को भी एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बनाने का कोशिश किए थे, लेकिन हॉस्पिटल पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म होने नहीं दिया. दूसरा बात है, कपिल सिब्बल को शर्म आते है तो जब शीखों का ऊपर दिल्ली में खुलेआम ऐसा दंगा हुआ था, शीख लोगों को ऊपर हमला हुआ था, तब कपिल सिब्बल को लज्जा नहीं आया? जब 2021 का वोट का बाद जब लगातार भारतीय जनता पार्टी का कम से कम 150 कार्यकर्ता को मौत में उतार दिया, 150 कार्यकर्ता का साथ साथ पूरा जो घर उनको बेघर कर दिया, हजारों कार्यकर्ता बेघर हो गया, तब कपिल सिब्बल को लज्जा नहीं आया? इस लज्जा कपिल सिब्बल को है तो इस देश छोड़ के बाहर जा सकता है, कोई असुविधा नहीं है. ऐसा जो लोग है, जो ऐसा हिंसा वो जब करे तब उसको समर्थन देंगे, और हिंसा जब दूसरा देखेंगे तब उसको विरोध करेंगे. ऐसा दोनों डबल स्टैंडर्ड लोगों को यहीं पर रहने का ही कोई जरूरत नहीं है. वो रहे और ना रहे, इस देश में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है. देश का तरक्की जैसे होना चाहिए ऐसे ही हो रहा है, तेज गति से हो रहा है.
1: Right, well, Rahul Sinha there of the BJP speaking with us here on NDTV. Thank you so much, sir, for joining us. Now, the attacks as far as TMC MPs are concerned, we're talking about Abhishek Banerjee and Kalyan Banerjee, that has now triggered a fierce political confrontation between the TMC and the BJP. The TMC has alleged that both incidents were part of a coordinated and politically motivated campaign. BJP on its side is saying that this, basically they've gone ahead and denied any sort of involvement. They are arguing that the confrontation reflects growing public anger against the ruling party in West Bengal rather than any organized conspiracy. The Trinamool Congress has, of course, announced a statewide protest that's going to be taking place today on the 1st of June in response to the attacks on the two leaders of the TMC. Now, of course, the police have stepped up that investigation. They've also made arrests. A swerve motor case has also been registered.
3: ওনার ড্রামা আমরা রাস্তা থেকে পার্লামেন্ট অবধি সব জায়গায় দেখেছি. এমন একটি লোক, এত বছরের পলিটিশিয়ান, এমএলএ, এমপি, এতবারের এত সিনিয়র অ্যাডভোকেট, তার ব্যবহার তার পার্টির মধ্যেই কমপ্লেনের যোগ্য. আপনারা জানেন পাবলিকের মার দুনিয়ার বার, যেন পাবলিকের যে রাগ আছে, রোষ আছে, ওটা ঠান্ডা হতে দিন. এত তাড়াহুড়ো করার কিছু নেই, অনেক বছর দাপিয়ে বেরিয়েছেন, শান্ত থাকুন না.
4: কই ল অর্ডার নেই বাঙাল মে, কই কানুন ব্যবস্থা নেই, জঙ্গল রাজ হ্যায়. ये बदलाव नहीं, बदले की राजनीति बंगाल में चल रही है. अभिषेक बैनर्जी को जिन्होंने मारा, अलग अलग न्यूज मीडिया में दिखा रहे हैं, कि उनको आम जनता मार रही है, वो बीजेपी की नेत्री है। सोशल मीडिया पे हमने सबों के फोटो डाल दिए हैं, वो बीजेपी की नेत्री अमित शाह के साथ खड़ी है, अग्निमित्रा पॉल के साथ खड़ी है, और वह शुरू में अंडा लेके खड़ी है। कुछ 9-10 महिलाएं जो कह रही हैं कि अभिषेक बैनर्जी आएंगे तो हम इससे स्वागत करेंगे, इससे ज्यादा और क्या प्रमाण चाहिए?
5: ये जनता का गुस्सा है। अब अभिषेक बैनर्जी कल बोल रहे थे कि भाजपा ने करवाया है,

0: वो बंगाल की सब आम जनता देख रहे हैं बंगाल में क्या चल रहा है। हमको मत बुलाइए, मेरे दल का जो मुखपत्र है वो लोग बोलेंगे।
1: कल्याण बनर्जी, अभिषेक बनर्जी,
0: तो बोल रही हूँ, दुनिया देख रहे हैं, खाली बंगाल नहीं, देश देख रहे, दुनिया देख रहे क्या हो रहा है।
2: What we saw was a very fine drama unfurled by Kalyan Banerjee. Probably he wants to take away all the limelight from Abhishek Banerjee, following Abhishek Banerjee's egg fiasco.
3: What I have to say is that BJP is creating a total state of lawlessness in West Bengal. Their leaders are making pious statements, whereas they are provoking their grassroots level workers who are basically antisocials to attack Trinamool Congress people. Yesterday, Abhishek Banerjee, our All India General Secretary, was attacked very severely when he went to meet the family of violence victims in Sonarpur. Our MP Kollan Banerjee has been attacked by BJP people in Chonditola and he had head injury. So I condemn all this and I am sure that we shall go to the governor, we shall go to the high court, but our fight against BJP ruffians will continue.
4: যে পরিবর্তন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তৃণমূলের উপর আক্রমণ করবে, এগুলো 25-75 এর ভাগের গন্ডগোল। যে অভুক্ত আছে তার অতৃপ্ত আত্মা আজকে কথা বলছে, তার উপরে আক্রমণ করছে। যা দেখার প্রশাসন দেখবে, বিজেপি দূর দূর পর্যন্ত এ ধরনের ঘটনা যুক্ত হল।
5: Now the attacks, as far as TMC MPs are concerned, has got a very has the opposition up in arms. In fact, they are now, in fact, reacting to all of this. Leaders from several India bloc parties, including the Congress, the Samajwadi Party, the Aam Aadmi Party, have all condemned the incidents and expressed solidarity with the TMC. While the BJP has rejected allegations of involvement, blamed public anger against the ruling government, the earlier ruling government. What began as a law and order issue in Bengal has now evolved into a wider political battle, with the BJP saying that these incidents reflect public anger against the previous government. Let's listen in to what Kapil Sibal has to say.
6: It's shameful, absolutely shameful. I'm ashamed that I'm living in a country where this is what happens, where the political party in power will use any means to destroy whatever foundations of democracy. Has Om Birla ji spoken? Has the Home Minister spoken? Has the Chief Minister spoken?
7: Shayad Kapil Sibal ji ko wo din yaad nahi hai jab TMC ne TMC ki sarkar ne jan pratinidhiyon ko hatya karke पेड़ में लटका दिया। शायद कांग्रेस के लोग अपने दिन भूल गए जब देश में सिखों का नरसंहार हुआ था।
8: मैं क्या बता, मैं कलकत्ते में थोड़ी हूँ, हाँ मैं क्या बता सकता हूँ। इस किस्म की चीज अच्छी नहीं है हमारे राजनीति के लिए। जो भी हो रहा है, हमारी परंपरा यह है कि हम बैलेट बॉक्स में जाके हमारी राय बताएं, पत्थर से या लोगों को पीट के मार के नहीं करना चाहिए।
9: कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, जिस तरह से हमने देखा, सोशल मीडिया पे भी देखा, किस तरह से बहुत गंदा हमला अभिषेक बनर्जी के ऊपर हुआ, ये तो सही नहीं है। अभी उनकी सरकार बने हुए 10 दिन भी नहीं हुए और उन्होंने इस किस्म के हमले कराने चालू कर दिए लोगों के ऊपर, ऑपोजिशन वालों के ऊपर। तो 5 साल के अंदर वो क्या करेंगे? क्या इसके लिए उन्होंने सत्ता ली है? क्या इसके लिए लोगों ने उनको वोट दिया? लोगों ने उनको वोट दिया था कि वो वेस्ट बंगाल का कुछ भला करेंगे, लेकिन वो भला नहीं कर रहे। वो केवल और केवल अपने ऑपोजिशन वालों के ऊपर, दूसरी पार्टियों के ऊपर इस तरह के हमले करा रहे हैं। तो हम इसका कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करें।
10: आप देखें, उसका सर पर अटैक हुआ तो कहीं भी खून निकला है? झूठा पार्टी, झूठा प्रपंच बना के

0: का दिखाना चाहते हैं, उसको कौन विश्वास करता है ममता बनर्जी को, देख के मन लागे बंगला में एक बात है ना, उसके लिए पूरा सही लागू।
1: जिन्होंने बंगाल को खेला होबे की हिंसक संस्कृति की ओर चला दिया, आज जनता के मन में उनके प्रति आक्रोश है, जनता के मन में उनके प्रति आक्रोश की भावना तीव्र गति से चल रही है और वो जानबूझकर जनता के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। बंगाल की जनता ने निर्ममता वाली ममता बनर्जी की ज़िहाती मानसिकता की सरकार उखाड़ फेंक दी। हिंसा कहीं भी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, हम आरी पार्टी हिंसा का विरोध करते हैं।
2: Switching tracks now to the CBSE portal controversy that continues to snowball, with the board now admitting to vulnerabilities in its OnMark platform. The CBSE has assured that cybersecurity professionals have been deployed, identified weaknesses that have now been contained, and system fortification is underway. Meanwhile, the leader of opposition Rahul Gandhi has launched a sharp attack when it comes to the CBSE evaluation and rechecking system, raising concerns over the financial burden when it comes to the students. In his remarks, he has gone ahead and said, why should the students really be paying for a mistake of the CBSE? He also went on to question why the answer sheet checks come at a cost and why the students are charged for re-evaluation. Let's listen in to what the education minister had to say on the matter.
3: चाहे 12वीं के नतीजे हों या फिर नीट लीक का मामला, ये तमाम सवाल हैं जो इस वक्त छात्रों के जहन में है कि अब आगे क्या, उनकी एंग्जाइटी, उनके तनाव को कम करने के लिए वो रास्ते तलाश रहे हैं, सवालों के जवाब तलाश रहे हैं। और इन्हीं सवालों के सीधे जवाब लेने के लिए हम पहुंचे हैं देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के पास। आइए सीधे उनसे बात करते हैं। धर्मेंद्र जी, शुक्रिया आपने वक्त निकाला है, लेकिन ये कठिन घड़ी है छात्रों के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए। मैं खुद एक पेरेंट हूँ और मैं समझ सकती हूँ कि किन तनाव से एक छात्र का पेरेंट और एक छात्र खुद गुजर रहा हो। OSM को लेकर तमाम बातें कही हैं और मैं शुरुआत उसी से करूँगी कि इस वक्त OSM एक ऐसा मामला है, जब एक ऐसे पड़ाव में छात्र है जब अपने करियर की उड़ान वो भरने वाला है, यूनिवर्सिटी का दाखिला है, कॉलेज का दाखिला है, अब वो क्या फेरे में पड़ा है, वैल्यूएशन जो हो रही है, रीवैल्यूएशन जो हो रही है, ऐसे में ऐसे अभिभावकों को, छात्रों को अभी आप क्या कहेंगे?
4: देखिए, मेरे दायित्व, मेरे समवेदना, मेरे सिंपाथी विद्यार्थियों की एंग्जायटी के साथ है। मैं उस विषय में देश की शिक्षा विभाग के दायित्व में रहने के नाते मैं खुद को जवाबदेह मानता हूँ। हमारे दायित्व है इसकी, उस तनाव में कैसे बच्चों को निवृत्त करना, कैसे उनको रिलीफ देना। आपने OSM के बारे में पूछा और उसमें OSM एक बाधक इस प्रकार के आपने चित्रण किया। देखिए, हर एक साल परीक्षा होती है, परीक्षा के बाद रीअसेसमेंट की मांग होती है, उसकी व्यवस्था भी है, हर एक साल रीवैल्यूएशन भी होती है। ये कोई नई व्यवस्था नहीं है, जो रीवैल्यूएशन रीअसेसमेंट की जो प्रक्रिया थी वो डिजिटली होती थी। विद्यार्थी अपने प्रश्न लिखने के बाद, परीक्षा वैल्यूएशन के बाद जब उनकी रिजल्ट आता है, रिजल्ट में अगर सहमत नहीं होती है, वो अपना अधिकार है, वो जाके दोबारा पूछे कि भाई मेरे इसमें क्यों कम नंबर आया। उसकी एक प्रक्रिया वो डिजिटली होता था, इस बार भी डिजिटली हो रहा है। उसकी पहले इस बार एक नया चीज़ किया CBSE ने, इसकी जो इवैल्यूएशन होता है परीक्षा पत्र की, प्रश्न पत्र की, वो पहले मैनुअली होता था, उसी जोन के अंदर होता था। थोड़ा इसमें भी 50 प्रकार की कंप्लेन आती थी, हमको कम नंबर आया, हमको थोड़ा पार्शियल हुआ, उस विषय में थोड़ा ऐसे हो गया। इसको OSM ऑन स्क्रीन मार्किंग एक नया प्रैक्टिस है, एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ड्रिवेन प्रैक्टिस है। ये अनेक इंस्टीट्यूट उसको अपनाए हैं, विश्व की एक्सेप्टेड प्रैक्टिस है। CBSE ने अपने रिफॉर्म के नाते उसको अपनाया है। अभी मैं आपको कहूँ, 17 लाख विद्यार्थी परीक्षा दिए, उनमें से 13 लाख विद्यार्थी लौट के आए नहीं कि मैं, मेरे नंबर पर डिससैटिस्फेक्शन में रहा है, वो आए नहीं, आए 4 लाख। हर एक साल आते हैं 2-2.5 लाख हर एक साल विद्यार्थी, पहले भी आते थे कि मेरे नंबर पे कुछ विषय है, उसको थोड़ा दोबारा देख लिया जाए, और CBSE उसको देखता था। इस बार उसकी संख्या बढ़ के हो गई 4 लाख। इसकी एक प्रमुख उसमें क्यों ये ओहोपोह की स्थिति हुई, उन्होंने जब विद्यार्थियों ने एप्लीकेशन किया, ऑनलाइन एप्लीकेशन का पहले भी होती थी, इस बार भी एप्लीकेशन किया, वो पोर्टल जितना तंदुरुस्त होनी चाहिए था, जितना मजबूत होनी था, वो नहीं था। CBSE ने उस पोर्टल को सफलता से चला नहीं पाया, इसके कारण उसमें एक लीच हुई, उसमें क्रैश हो गया, दो तीन दिन की थोड़ा गड़बड़ी हुई जिसके कारण बच्चों में थोड़ा नाराजगी भी बढ़ी। यह विसंगति को ठीक कर लिया गया है। अभी मेरे पास जो लाटेस्ट जानकारी है, 4 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी एप्लीकेशन किए कि हमको रीअसेसमेंट करना है, री इवेल्यूएट करना है। उसमें से उन्होंने 11 लाख क्वेश्चन सेट्स मांगा, ये सब लगभग विद्यार्थियों के पास पहुँच गया है। अभी उस पोर्टल को हम लोग उसको ठीक कर रहे हैं।
2: Right, so amid that massive scrutiny as far as the OSM system is concerned, the CBSE has taken note of the lapses, stepped up its security measures after vulnerabilities were flagged in that OnMark portal. The board now says that cybersecurity experts from the government agencies and IITs have been deployed in order to strengthen the platform and the identification as far as the weaknesses is concerned. Those weaknesses have been contained is what the CBSE is saying.
5: The Central Board of Secondary Education has accepted loopholes in its OSM system amid a controversy over alleged vulnerabilities in the OnMark portal. CBSE says a high-level cybersecurity exercise is now underway to strengthen the platform, addressing concerns raised in the public domain. Cybersecurity experts from multiple government agencies as well as the IITs have been deployed over the last few days. The board says vulnerabilities identified in the OnMark portal have been contained, adding that continuous monitoring is underway. CBSE has also thanked citizens and ethical hackers for flagging potential issues and says it is working with them to further strengthen the system. These developments come amid scrutiny over reported technical glitches and concerns regarding the evaluation process. The row escalated after some class 12 students alleged discrepancies in uploaded answer sheets, raising concerns over possible OSM mix-ups. Sarthak Siddhant, a class 12 student, found discrepancies in CBSE's tender process after comparing old and new tender documents. Here's what he said.
6: The Quant EduTech company was given the CBSE tender of the OSM evaluation by CBSE. And I have found out many changes that were done to the tender or to the request for proposal, some corrigendums that were added later, which might paint a bad picture of CBSE. And I'm saying this because the changes that were made were not in favor of CBSE or the students, but it was in the favor of Quant EduTech.
5: CBSE now says the answer books are safe, verified through multiple checks, and has urged students not to be misled by speculation. With this, the board is seeking to restore confidence in its digital evaluation system. Bureau Report, NDTV.
2: And with that, we're slipping into a very short break. Back with a whole lot more. Stay tuned.

0: अभिषेक बैनर्जी को जिन्होंने मारा, अलग अलग न्यूज मीडिया में दिखा रहे हैं कि उनको आम जनता मार रही है, वो बीजेपी की नेत्री है। सोशल मीडिया पे हमने सबों के फोटो डाल दिए हैं, वो बीजेपी की नेत्री अमित शाह के साथ खड़ी है, अग्निमित्रा पॉल के साथ खड़ी है, और वह शुरू में अंडा लेके खड़ी है कुछ 9-10 महिलाएं जो कह रही हैं कि अभिषेक बैनर्जी आएंगे तो हम इससे स्वागत करेंगे। इससे ज्यादा और क्या प्रमाण चाहिए?
1: ये जनता का गुस्सा है। अब अभिषेक बैनर्जी कल बोल रहे थे कि भाजपा ने करवाया ये, और आज जब अरेस्ट हुआ तो देखा जा रहा है कि लवली मैत्रो वहां का टीएमसी विधायक के एक्स विधायक के करीबी सब कैडर लोग हैं। तो ये टीएमसी में गोष्ठी दर्द तो आज का बात नहीं है, वो बहुत दिन से चल रहा है, क्योंकि ये जो पार्टी है वो तोलाबाजी, सिंडिकेट और कटमनी के ऊपर चलता है। देश सेवा उनका प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है, इसीलिए आज पश्चिम बंगाल 50 साल मिनिमम पीछे चला गया।
2: वो बंगाल की सब आम जनता देख रहे हैं बंगाल में क्या चल रहा है। हमको मत बुलाइए, मेरे दल का जो मुखपत्र है वो लोग बोलेंगे।
3: कल्याण बनर्जी, अभिषेक बनर्जी,
2: मैं तो बोल रही हूँ, दुनिया देख रहे हैं, खाली बंगाल नहीं, देश देख रहे, दुनिया देख रहे क्या हो रहा है।
4: What we saw was a very fine drama unfurled by Kalyan Banerjee. Probably he wants to take away all the limelight from Abhishek Banerjee following Abhishek Banerjee's egg fiasco.
5: What I have to say is that BJP is creating a total state of lawlessness in West Bengal. Their leaders are making pious statements, whereas they are provoking their grassroots level workers who are basically antisocials to attack Trinamool Congress people. Yesterday, Abhishek Banerjee, our All India General Secretary, was attacked very severely when he went to meet the family of violence victims in Sonarpur. Our MP Kollan Banerjee has been attacked by BJP people in Chonditola and he had head injury. So I condemn all this and I am sure that we shall go to the governor, we shall go to the high court, but our fight against BJP ruffians will continue.
6: যে পরিবর্তন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তৃণমূলের উপর আক্রমণ করবে, এগুলো 25-75 ভাগের গন্ডগোল। যে অভুক্ত আছে তার অতৃপ্ত আত্মা আজকে কথা বলছে, তার উপরে আক্রমণ করছে। যা দেখার প্রশাসন দেখবে, বিজেপি দূর দূর পর্যন্ত এ ধরনের ঘটনার সঙ্গে যুক্ত হল।
7: A day after Trinamool Congress General Secretary Abhishek Banerjee was attacked, a meeting of the party's newly elected legislators failed to take off as only 20 of 80 MLAs turned up for that meeting. The absence of nearly three-fourths of the legislators raised eyebrows. With only around 20 legislators in attendance, the meeting was eventually called off, raising questions over coordination within the party. The development comes amid heightened political tensions following alleged attacks on senior Trinamool Congress leaders, including Abhishek Banerjee and Kalyan Banerjee. The party has announced statewide protests and accused authorities of targeting its workers. Mamata Banerjee is also set to lead a major protest program in Kolkata as the political confrontation in West Bengal continues to escalate. Meanwhile, the BJP has blamed the Trinamool Congress of staging the attacks for political gains and for police protection.
8: आम से हमारा पास, हमारा जो legislative leadership है, उनका पास एमएलए लोगों को ये रिक्वेस्ट आ रहा था कि देखिए ये तो अचानक हो गया, तो कलकत्ता रवाना होने का जो हमारा प्रोग्राम था, तो अभी तो हम प्रोटेस्ट रैली कर रहे हैं और पुलिस प्रोटेस्ट रैली से हमारा वर्कर को हैरस कर रहे हैं, तो फॉर द टाइम बीइंग जो शेड्यूल था उसको डेफर किया जाए, तो हालत थोड़ा ठीक होने से हम फिर ये मीटिंग करेंगे। सब लोग पार्टी का साथ है, लेकिन ये प्रैक्टिकल थोड़ा इश्यूज है।
9: अभिषेक बैनर्जी के ऊपर जो हमला किए थे, पूरा तृणमूल का साजिश, वो अभी जनता का सामने चले है। जितना लोग ये काम किया, फोटो देख के पुलिस उनको पकड़ा, और सारे तृणमूल का कार्यकर्ता, इसलिए ऐसा किया गया। जो एक तो वो दिख दिखा सके, थोड़ा सिंपैथी ले सके, और दूसरा अपना सिक्योरिटी बढ़ाने का चक्कर

0: ये साजिश उन्होंने किया था। अब ये चीज पकड़ा गया, स्पष्ट हो गया, इस ये लोग कितना घृण्य है।
1: Rajya Sabha MP Kapil Sibal has stoked a row while slamming the BJP over the attack on TMC leaders in Bengal. He accused the centre of trying to quote unquote destroy democracy and said he feels ashamed to live in the country over the current political climate. Sibal also questioned whether this is the model of a Viksit Bharat that the government promises, alleging that the BJP wants to decimate the opposition. The remarks have drawn a swift and strong response from the BJP. BJP leaders have asked why Kapil Sibal remains silent during political violence under the Trinamool Congress rule in the state of West Bengal.
2: It's shameful, absolutely shameful. I'm ashamed that I'm living in a country where this is what happens, where the political party in power will use any means to destroy whatever foundations of democracy. Has Om Birla ji spoken? Has the Home Minister spoken? Has the Chief Minister spoken?
3: Shahid कपिल सिब्बल जी को वो दिन याद नहीं है जब टीएमसी ने टीएमसी की सरकार ने जनप्रतिनिधियों को हत्या करके पेड़ में लटका दिया। शायद कांग्रेस के लोग अपने दिन भूल गए जब देश में सिखों का नरसंहार हुआ था।
4: इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट दैट अ पर्सन हु हैज मिंटेड मेड करोड़ ऑफ रुपीज बाय रनिंग हिज वेरी सक्सेसफुल प्रैक्टिस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज सच अ डिम व्यू अबाउट इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस। व्हेन नड्डा जीज कॉन्वॉय वॉज अटैक्ड, व्हेन इन 2013, 18 and 23 panchayati poll violence took place and Supreme Court had made lot of comments. That time Kapil Sibal was completely eloquently silent. So they take supari against Bharat because they have problem with BJP.
5: भारत की जड़ें इतनी गहरी रही लोकतंत्र में। अगर हम गण की बात करें, गणतंत्र की बात करें, तो ऋग्वेद काल में भी बातें आती है। और वहां इस भारत में जो अशोक का देश है, गांधी का देश है, उसमें इस प्रकार के हिंसात्मक कार्रवाई होना ना लोकतांत्रिक पूरे प्रक्रियाओं पे और लोकतंत्र पे ही मैं समझता हूं वो एक खतरा हुआ है ये। और ये वहां पे बंगाल की सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए। असहमति लोकतंत्र की खूबसूरती है। और इस संदर्भ में जो कपिल सिब्बल ने कहा, मैं इतना ही कहना चाहूंगा आज ये कि यहां पर लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी हैं। इसे कमजोर करने की जो साजिशें हैं वो कभी भारत में सफल नहीं हो सकती है।
1: Slipping to a short break, we return with news on the RCB's big win at the IPL. And of course, those moves by Virat Kohli, those are the champion moves we'll talk from now. Stay tuned.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा प्योर मसाला।
5: नवनिधि शर्मा द फादर ऑफ त्विशा जॉइंस मी वन ऑन वन फॉर द फर्स्ट टाइम।
6: शुरू में ही देखने को मिल गया था कि क्रिमिनल माइंडसेट है। भेड़िया ने बकरी की खाल में शिकार किया है सर, दे आर कैमेलियन पीपल।
7: अ ब्रदर मेजर हर्षित स्पीक्स आउट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन नेशनल टेलीविजन।
8: वी हैव बीन फाइटिंग नॉनस्टॉप। We are not stopping until the justice is served.
9: Miss Singh, where is your son? Let me ask you that pointed question.
10: He is ready to face all the questions, but he has to exhaust his legal remedies.
11: Breaking news coming in. Samarth Singh has finally surrendered. These are fresh visuals coming on your
12: screen.
11: First on NDTV. NDTV is the only network in the country that is relentlessly chasing this case.
7: Joining us live now for the first time is Nagendra Singh, senior advocate, appearing for Samarth Singh.
13: The girl has gone because of the pressure created by her own parents.
7: These are difficult circumstances, but the hard questions still need to be asked.
14: R Pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, everyday.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आरती और मसाला।
5: भरोसा ऑन मोदी जी, एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी मैनेजमेंट एंड अश्योरेंस ऑफ करेज गिवन बाय अमित शाह जी टू ऑल द पीपल, वी आर विथ यू।
6: इलीगल माइग्रेंट, ये बांग्लादेश घुसपैठिया के लिए ये दोनों पार्टी पट्टी पर है, देश की जनता के लिए नहीं, इसलिए देश के जनता ने उसको नाकार।
7: भय से भरोसा इज द ट्रांजिशन विच इज हैपनिंग नाउ, भय से मुक्ति इज द विक्ट्री बीइंग डिपिक्टेड।
8: अब आपकी सरकार ओडिशा और बंगाल दोनों में है, तो रसगुल्ला किसका है? ओडिशा का या बंगाल का?
9: ओडिशा का है, रसगुल्ला है, रसगुल्ला दोनों की।
10: आई थिंक इट विल बी गुड टू ब्रिंग बैक the confidence of industry.
11: The people of Kerala understood the real politics of CPM and I left the Democratic Front.
12: And that kind of victory is truly astonishing. And I do believe it marks a return of the Congress with the kind of mandate to bring about radical transformation.
13: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।
14: हाई रेट चेक द ऑडियो, हाई रेट चेक द ऑडियो।
15: लेट्स डू इट, लेट्स डू इट, लेट्स स्टार्ट।
16: ब्रेकिंग स्टोरी, वी आर जंपिंग स्ट्रेट इनटू इट।
17: वी गॉट अ पिक्चर ऑफ द लेटर। व्हाट इज इन योर लेटर? यू कैन नेवर प्रेडिक्ट व्हाट्स गोना हैपन इन तमिलनाडु पॉलिटिक्स।
18: 21 डेज इन कश्मीर, अनफिल्टर्ड लिस्ट ऑफ थिंग्स आई सॉ एंड ऑब्जर्व्ड ऑन द ग्राउंड।
19: वेरी स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट फ्रॉम द लाइन ऑफ कंट्रोल। देयर वर सम चिल्ड्रन हु हैव लॉस्ट लिम्ब्स in the shelling.
20: For a country that has fought so many wars in the mountains and at high altitude,
21: we're standing on the Indian Navy's newest warship,
19: the line of control, Ship Arur, NDTV.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: ऑक्टर रोमा मैनुअल वाइंडिंग चार लोगों के पास है
3: कुछ इससे भी अनोखा।
2: कमला पसंद सिर्फ एक अनोखा स्वाद कमला पसंद पान मसाला।
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा क्या स्वाद।

0: पत्थर से अंडा फेंक के मरा है। आपने कभी देखा है टीएमसी के कोई भी लीडर, भाजपा के अमित शाह को, मोदी जी को, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी लीडर्स, मिनिस्टर्स को कोई अंडा फेंक के, पत्थर फेंक के टीएमसी के कोई कार्यकर्ता मरा आज तक? मरा है 2014 से 2026 तक? नहीं मैडम। लेकिन 9 तारीख शपथ देने के बाद मैडम, अभी 20 दिन 25 दिन हुआ और इसमें आपको आपको मैं बता रहा हूं, 1.5 करोड़ के ऊपर घर को बेघर कर दिया मैडम। आप इसको क्या कहेंगे? विल कॉल दिस द बीजेपी गुड गवर्नमेंट्स? नो मैडम। मैडम कल्याण बनर्जी पार्टी के चीफ हुई, सीनियर एडवोकेट जनरल, सुप्रीम कोर्ट का लॉयर, उम्र हो गया 60-65 साल उम्र है, वो रास्ता सड़क से जा रहा है, उसको पत्थर के माथा में मारा। आप आइए पूरा बंगाल में आपको घुमाऊंगा, कुचबिहार से सागर तक, हजारों हजारों के ऊपर प्लेटफॉर्म में, 50,000 के ऊपर शॉप्स वर डिस्ट्रॉयड मैडम। मैडम ये एक सुशासन है, ये सबका साथ सबका विकास है, ये आत्मनिर्भर भारत है, ये क्या है? बेटी बचा बेटी पढ़ा क्या है? कोई राज्यों में मैडम एक भी पैसा 2,000 1,000 करके जो भी बोला था कोई राज्य में नहीं दिया, लेकिन यहाँ पर बंगाल में 3,000 करोड़ का वादा करके अभी 12 पेज का फॉर्म दे रहे मैडम।
1: सर अभी मुद्दे पर रहते हैं, मुद्दे पर रहते हैं। आप कह रहे हैं कि कभी मैंने देखा है कि किसी को फेंक करके अंडा मारा है। आयरोनिकली मैंने देखा है खागेन मुर्मू ट्राइबल एमपी हैं, उनको आई थिंक 6 महीना हुआ है, फेंक करके उनकी गाड़ी पे पत्थर मारा था। उनके 2 ऑपरेशन हुए हैं, मैं उनसे अभी मिली थी, अभी भी उनको अपनी लेफ्ट आंख पे पूरी तरीके से दिखता नहीं है, अभी भी उनकी आंख में यहाँ पर खून चढ़ा हुआ है, 2 ऑपरेशन उनके हुए हैं। तो ये मैंने तो खुद अपनी आंखों से देखा है, फेंक करके उनके ऊपर पत्थर मारा था उनकी आंख के ऊपर। आपको एक याद दिला देती हूँ, केस जो है जनवरी 2023 में कैलकटा हाईकोर्ट बेंच ओवरटर्न्ड द बेल गिवन टू अ फ्यू पीपल हु हैड बार्ज्ड इनटू समबडीज हाउस, हैड असॉल्टेड हिम एंड हिज वाइफ। शी वॉज सो स्केर्ड बादल देवनाजी कि उसने अपने ऊपर केरोसिन डाल लिया, वो जलने को तैयार थी क्योंकि आपके पार्टी के लोग वहां पर घुस गए थे, दे वर थ्रेटनिंग टू डिसरोब हर। द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व द कंप्लेनेंट्स वाइफ वॉज विशियसली पुल्ड बाय द हेयर एंड वॉज डिसरोब्ड, उनके कपड़े उतार दिए। द अक्यूज पर्सन वर अबाउट टू असॉल्ट हर सेक्सुअली व्हेन द लेडी गैदर्ड करेज टू पोर केरोसिन ऑन हर बॉडी एंड गेव अ थ्रेट ऑफ सेल्फ इमोलेशन ऑन विच द अक्यूज पर्सन इंक्लूडिंग द रिस्पॉन्डेंट्स फ्लेड अवे फ्रॉम द कंप्लेनेंट्स हाउस। A woman had to pour kerosene on herself because your party people stripped her naked and were going to rape her. But democracy was alive and well and kicking all of these 5 years.
0: Madam, आपने ये नहीं बोला, आपने बिल्कुल सही कहा मैडम। लेकिन जब काउंट के दिन देर बजे है, ममता बनर्जी जब लोड शेडिंग हुआ था, ममता बनर्जी 13,000 वोटों से लिख रहा था उस समय, ममता जब लोड शेडिंग हुआ, ममता बनर्जी अंदर गया, ममता बनर्जी को लात मार के निकाल दिया मैडम। 70 साल उम्र है मैडम, ये बंगाल का कल्चर नहीं है। और अभिषेक बनर्जी का एक आंख जो डिस्ट्रॉयड हो गया वो भाजपा के कारण भी हुआ है, एक आंख डिस्ट्रॉयड होगा अभिषेक बनर्जी के, एक आंख में देख नहीं पाता। आपने बिल्कुल सही कहा
1: संजू वर्मा, यू नो वट एवर द टीएमसी हैज डन एंड वन कैन कीप रिपीटिंग एंड वन शुड कीप रिपीटिंग वट द टीएमसी हैज डन, वट द सीपीएम हैज डन इन द पास्ट, बट डज दैट कंडोन द अटैक्स विच आर हैपनिंग नाउ एंड विच इज वाई कपिल सिब्बल पर हैप्स इज अशेम टूडे बिकॉज ही वॉज होपिंग फॉर चेंज। देर आर पिक्चर्स नाउ ऑफ अभिषेक बैनर्जी बींग असोल्टेड एंड द टीएमसी इज सेंग द फॉलोइंग पीपल आर आइडेंटिफाइड एज योर पार्टी मेंबर्स, शुकांता साहा, प्रीतम दास, ऋषभ सरकार, आकाश गयान, एंड दिस आकाश वॉज सीन विद रूपा गांगुली इन वन ऑफ हर पोलिटिकल रैलीज। सो हाउ आर यू एनी डिफरेंट फ्रॉम द टीएमसी? इट्स द सेम थिंग।
2: लेट मी मेक वन थिंग वेरी क्लियर ऑन योर शो पद्मजा, द बीजेपी डज नॉट एंडोर्स वायलेंस और विजिलेंटिज्म नो मैटर व्हाट द प्रोवोकेशन। हैविंग सेड दैट, फर्स्ट लेट मी टेक यू ऑन कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल इज द सेम लॉयर who was laughing gleefully during the Arjikar rape and murder hearing in the Supreme Court. This is the same Kapil Sibal who was a career congressman and then conveniently shifted to the Samajwadi Party simply because of the lure of a Rajya Sabha ticket. So Kapil Sibal's career history shows that, you know, he's basically

0: right at the top, the big focus story on the show today. Less than a month since the BJP formed a government in West Bengal, and already there is anguished hand-wringing about how democracy is freshly endangered in India. The catalyst for this is a series of incidents reported from various parts of West Bengal where leaders of the Trinamool Congress were confronted with pushing, shoving, chor-chor slogans and in at least one case, physical assault. The maximum outrage, of course, has been generated by the attack on TMC MP Abhishek Banerjee on Saturday when he had gone to the house of a party worker in South 24 Parganas. While there, he was heckled and pelted with eggs and stones. Five men have since been arrested for that attack. The very next day, another MP of the TMC, Kalyan Banerjee, faced slogans in Hooghly. He said that he also was left bleeding after being hit with a ball of some kind. Before this, eggs were pelted at the car of Shagota Roy on the 28th of May, and TMC MP Bapi Haldar's office was vandalized just today when people claimed that they discovered relief material that was meant for cyclone victims was found hoarded in Bapi Haldar's party office. But before we go any further, first listen in to how Shagota Roy faced sloganeering from people when he was walking away from his office, and how Kalyan Banerjee, after being attacked, was almost in tears, and he described that the assault on him was nothing short of an attempt to murder. Now, the TMC and the combined opposition from the Congress to the Aam Aadmi Party, RJD, Shiv Sena, UBT, all of them have decided to take up this issue, the attacks on members of the TMC on a national level. Condemnation came in thick and fast, and Abhishek Banerjee has also said he will take up this attack to the Lok Sabha Speaker and the Supreme Court of India. But the strongest reaction of all came from Rajya Sabha MP Kapil Sibal, who today said that such attacks, such violence, such lawlessness makes him absolutely ashamed to be living in India today.
1: Gandhi ka desh hai, usme is prakar ke hinsatmak karwai hona, ye na loktantrik pure prakriyaon pe aur loktantra pe hi main samajhta hu wo ek khatra hai ye. Aur ye wahan pe Bengal ki sarkar ko sunishchit karna chahiye, asahmati loktantra ki khoobsurti hai.
2: Is kisam ki cheez achhi nahi hai hamare rajneeti ke liye, jo bhi ho raha hai hamari परंपरा यह है कि हम बैलेट बॉक्स में जाके हमारी राय बताएं पत्थर से या लोगों को पीट के मार के नहीं करना चाहिए
3: आई एम अशेम्ड दैट आई एम लिविंग इन अ कंट्री वेयर दिस इज व्हाट हैपेंस वेयर द पॉलिटिकल पार्टी इन पावर विल यूज एनी मींस टू डिस्ट्रॉय व्हाटएवर फाउंडेशंस ऑफ डेमोक्रेसी आवर ग्रेट लीडर्स लेड डाउन व्हेन दिस रिपब्लिक केम इनटू बीइंग
4: फिल सिब्बल जी को वो दिन याद नहीं है जब टीएमसी ने टीएमसी की सरकार ने जनप्रतिनिधियों को हत्या करके पेड़ में लटका दिया शायद कांग्रेस के लोग अपने दिन भूल गए जब देश में सिखों का नरसंहार हुआ था
0: And that brings us to the question, is India really in a position which should shame us all, a situation where political rivals are being subjected to violence and intimidation by the BJP, or is there an inherent hypocrisy in talking of the end of democracy now, when these self-same people, these very people had been quiet on the widespread violence, rape and murder perpetrated just 5 years ago by those people who were in their ideological corner. Joining us on the debate today, we have Sandeepa Saha, ex-PEL TMC MLA, will be joining us in just a bit, along with Kanchan Gupta, senior journalist, consulting editor of NDTV. Jayanta Ghoshal joins us now. We also have Sanju Verma, national spokesperson of the BJP. But I'm going to start with political analyst Badal Debnath. Seems a little bit rich, Badal Debnath, that today people are talking about democracy and lawlessness and of being ashamed, when last 5 years there was no shame, there was no democracy, there was no lawlessness.
5: मैडम सबसे पहले मैं कहूंगा पार्टी के ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी और तीन बार का सांसद मैडम उसको पत्थर से अंडा फेंक के मारा है. आपने कभी देखा है टीएमसी के कोई भी लीडर भाजपा के अमित शाह को मोदी जी को सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी लीडर्स मिनिस्टर्स को कोई अंडा फेंक के पत्थर फेंक के टीएमसी के कोई कार्यकर्ता मारा आज तक मारा है 2014 से 2026 तक नहीं मैडम. लेकिन 9 तारीख शपथ देने के बाद मैडम अभी 20 दिन 25 दिन हुआ और इसमें आपको आपको मैं बता रहा हूं 1.5 करोड़ के ऊपर घर को बिघर कर दिया मैडम. आप इसको क्या कहेंगे? वील कॉल दिस द बीजेपी गुड गवर्नमेंट्स? नो मैडम. मैडम कल्याण बनर्जी पार्टी के चीफ हुई सीनियर एडवोकेट जनरल सुप्रीम कोर्ट का लॉयर उम्र हो गया 60-65 साल उम्र है और रास्ता सड़क से जा रहा है उसको पत्थर फेंक के माथा में मारा. आप आइए पूरा बंगाल मैं आपको घुमाऊंगा कुचबिहार से सागर तक हजारों हजारों के ऊपर प्लेटफॉर्म में 50,000 के ऊपर सब वर डिस्ट्रॉयड मैडम. मैडम ये एक सुशासन है ये सबका साथ सबका विकास है ये आत्मनिर्भर भारत है ये क्या है बेटी बचा बेटी पढ़ा क्या है? कोई राज्य में मैडम एक भी पैसा 2,000-1,000 करके जो भी बोला था कोई राज्य में नहीं दिया. लेकिन यहाँ पर बंगाल में 3,000 करोड़ का वादा करके अभी 12 पेज का फॉर्म दे रहे हैं मैडम.
0: सर अभी मुद्दे पर रहते हैं मुद्दे पर रहते हैं. आप कह रहे हैं कि कभी मैंने देखा है कि किसी को फेंक करके अंडा मारा है. आयरोनिकली मैंने देखा है खागेन मुर्मू ट्राइबल एमपी हैं उनको आई थिंक 6 महीना हुआ है फेंक करके उनकी गाड़ी पे पत्थर मारा था. उनके 2 ऑपरेशन हुए हैं मैं उनसे अभी मिली थी. अभी भी उनको अपनी लेफ्ट आँख पर पूरी तरीके से दिखता नहीं है. अभी भी उनकी आँख में यहाँ पर खून चढ़ा हुआ है. 2 ऑपरेशन उनके हुए हैं तो ये मैंने तो खुद अपनी आंखों से देखा है. फेंक करके उनके ऊपर पत्थर मारा था उनकी आंख के ऊपर. आपको एक याद दिला देती हूँ केस जो है जनवरी 2023 में कैलकटा हाईकोर्ट बेंच ओवरटर्न द बेल गिवन टू अ फ्यू पीपल हु हैड बार्ज्ड इनटू समबडीज हाउस हैड असोल्टेड हिम एंड हिज वाइफ. शी वॉज सो स्केर्ड बादल देवनाथ जी कि उसने अपने ऊपर केरोसिन डाल लिया. वो जलने को तैयार थी क्योंकि आपके पार्टी के लोग वहां पर घुस गए थे. दे वर थ्रेटनिंग टू डिसरोब हर. द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व द कंप्लेनेंट्स वाइफ वाज विशियसली पुल्ड बाय द हेयर एंड वाज डिसरोब्ड. उनके कपड़े उतार दिए. द अक्यूज्ड पर्सन वर अबाउट टू असॉल्ट हर सेक्सुअली व्हेन द लेडी गैदर्ड करेज टू पोर केरोसिन ऑन हर बॉडी एंड गेव अ थ्रेट ऑफ सेल्फ इमोलेशन ऑन व्हिच द अक्यूज्ड पर्सन इंक्लूडिंग द रिस्पोंडेंट्स फ्लेड अवे फ्रॉम द कंप्लेनेंट्स हाउस. अ वुमन हैड टू पोर केरोसिन ऑन हर सेल्फ बिकॉज your party people stripped her naked and were going to rape her. But democracy was alive and well and kicking all of these 5 years.
5: Madam, aapne ye nahi bola. Aapne bilkul sahi kaha. Bilkul sahi kaha, madam. Lekin jab count ke din der baje hai, Mamata Banerjee jab load shedding hua tha, Mamata Banerjee 13,000 voters se lead pe aaya tha. उस समय ममता जब लोड शेडिंग हुआ ममता बनर्जी अंदर गया ममता बनर्जी को लात मार के निकाल दिया मैडम. 70 साल उम्र है मैडम. ये बंगाल का कल्चर नहीं है. और अभिषेक बनर्जी एक आग जो डिस्ट्रॉयड हो गया वो भाजपा के कारण भी हुआ है. एक आग डिस्ट्रॉयड होगा अभिषेक बनर्जी के एक कट में देख नहीं पाता ही. आपने बिल्कुल सही कहा.
0: संजू वर्मा यू नो वट एवर द टीएमसी हैज डन एंड वन कैन कीप रिपीटिंग एंड वन शुड कीप रिपीटिंग वट द टीएमसी हैज डन वट द सीपीएम हैज डन इन द पास्ट बट डज दैट कंडोन द अटैक्स विच आर हैपनिंग नाउ एंड विच इज वाई कपिल सिब्बल परहैप्स इज अशेम्ड टुडे बिकॉज ही वॉज होपिंग फॉर चेंज. देर आर पिक्चर्स नाउ ऑफ अभिषेक बैनर्जी बींग असोल्टेड एंड द टीएमसी इज सेइंग द फॉलोइंग पीपल आर आइडेंटिफाइड एज योर पार्टी मेंबर्स. शुकांता साहा प्रीतम